क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ मैंने अगर इश्क का इजहार किया आपसे प्यार।

0: हमें यूं हमें मालूम न था।
1: है खता आपके फिर हुस्न पे क्यों वार किया, खूब ये प्यार किया।
2: क्या हुआ
0: क्या हुआ, मैंने अगर इश्क का इजहार किया।

जब खुदा किसी को बनाता है ना, तो उसमें कुछ खास बात होती है। लेकिन खुदा ने अदा को बनाया, इसीलिए वो खास बात खुदा में है।